0: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपला खानदेश आपली माणसं।
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टच।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या कोई समझदार इंसान अपने घर की तिजोरी में या अपनी मखमली रजाई के भीतर आग की जलती हुई चिंगारी को छिपाकर रखेगा? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि आग और रुई का कोई मेल नहीं है। आप उसे कितनी ही परतों में, कितनी ही हिफाजत से छिपा लें, वो चिंगारी धीरे धीरे भीतर ही भीतर सुलगती रहेगी और एक दिन अचानक भभक कर आपके पूरे आशियाने को मरुस्थल बना देगी, सब कुछ जलाकर राख कर देगी। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हम सब अपने इस दिल के भीतर रोज एक ऐसी खतरनाक आग को पाल रहे हैं और सोचते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा और हम सुरक्षित रहेंगे। वह आग है हमारे भीतर छिपा हमारा अहंकार, हमारी अकड़, यह झूठा भ्रम कि मैं कुछ हूँ। कबीर साहब आज हमें इसी भीतरी आग के भयानक अंजाम से सचेत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र। मैं बड़ी बलाई है, सकेत निकसो भाजी। मैं बड़ी बलाई है, सकेत तो निकसो भाजी। कब लग राखो हे सखी, रुई पलेटी आगी। मैं बड़ी बलाई है, सके तो निकसो भाजी। मैं बड़ी बलाई है, सके

0: आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे प्रवीणा दीदी इनसे गीताई और विनोबा के बाद ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थिति, इस विषय पर उनका साक्षात्कार।
1: प्रेम पंथ अहिंसा का।
2: मैं प्रवीणा देसाई, मेरी स्कूल बम्बई में थी और वो गांधीयन स्कूल थी, तो इसलिए मेरे सब शिक्षक जो थे वो बहुत आदर्शवादी कैरेक्टर वाले और खादीधारी ऐसे गांधी के डिसाइपल्स थे। तो हमने गांधी जी को भी देखा था, काम भी किया था गांधी जी की संस्थाओं में, पर हम 10 साल के थे तब गांधी जी का तो परलोक गमन हो गया, तो इसलिए उसके बाद हम खोज में थे कि हमको गांधीयन लाइन्स कहाँ से मिलेगी। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते, हम फर्स्ट ईयर में थे, तब से विनोबा जी का बोधान यज्ञ शुरू हो गया था और एक मैगजीन गुजराती में निकलती थी तब, भूमिपुत्र करके, दो पन्ने की। तो हमारे एक प्रोफेसर ने हमको उसको दिया और हमने कॉलेज में ही सर्वोदय मंडल शुरू कर दिया था। तो जितने 6 साल हम मुंबई में पढ़े, हम विनोबा जी का काम करते रहे। फिर जब कॉलेज छोड़ दिया पढ़ करके, तो विनोबा जी के पास आ गए। अभी तो करीब 58 साल हो गए विनोबा जी के पास आ करके, उसमें से 21 साल विनोबा जी जिंदा थे और 35-36 साल विनोबा जी के जाने के बाद उनका काम कर रहे हैं। ऐसे विनोबा जी ने 71 में गीताई मिशन शुरू किया और मुझे बुला करके कहा कि तुमको यह काम करना है। तो तब से करीब 50 साल होने आए, 46-47 साल हो गए हम लोग वो काम कर रहे हैं। और हमने हर साल 1,00,000 गीताई, जो विनोबा ने संस्कृत में से मराठी बनाई है, वो मराठी जनता में पहुँचाते हैं ऑल ओवर इंडिया, जहाँ भी मराठी सर्कल्स है बाहर भी। और गीता प्रवचन जो विनोबा जी की है वो तो 26 भाषा में उसका अनुवाद हुआ है, तो वो हर प्रांत की 10,000, एक एक प्रांत की, कोई भी एक प्रांत की 10,000 हर साल, ऐसा हम हमारा टारगेट है पहुंचाना, फिर उस पर शिविर सम्मेलन करना, उस पर मंडल चलाना, स्वाध्याय ग्रुप्स चलाना, और गीता के मुताबिक जीने वाले बच्चे कैसे तैयार हो। तो कॉलेज के जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनमें हम जोनल कैंप्स करते हैं 7-7 दिन के, कि हाउ टू लिव द गीता इन एक्चुअल लाइफ। तो उस मुताबिक हम फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हो जाते हैं, एमटेक, एमएलएलबी, एमकॉम, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, वो सब फिर हमारे पास आकर के सीखते हैं वो। तो उसका रेसिडेंशियल एक यूथ सेंटर भी हमने खोला है। तो गीताई मिशन इन इटसेल्फ काफ़ी कुछ विनोबा जी की गीताई के काम को प्रचार करने के बारे में, और भी जितनी संस्थाएँ देश भर में गीता प्रचार कर रही है उनके साथ भी समन्वय साधते हुए हर 3 साल में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें 30 संस्थाएं हमसे जुड़ती हैं एक कॉन्फ्रेंस में, और फिर हम मिलकर के एक टोटल प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे क्या करना है। हमारा टारगेट ऐसा है कि हमको राष्ट्र की सेवा करने वाले त्यागी और बलिदानी युवक मिलने चाहिए। तो हम बच्चों की पाठ्यता परीक्षाएँ लेते हैं, हर साल 2,00,000 से अधिक विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठते हैं महाराष्ट्र भर में, गोवा इंक्लूडिंग। उसके अलावा हम यूथ ईयर्स में या ऐसे ईयर्स में उनको स्पेशल कुछ कुछ देते हैं कि पूरी गीता पाठ करो तो हम 500 रुपये का बख्शीश देंगे, मराठी में पाठ करो तो 250 रुपये का देंगे, ऐसा सब अलग अलग भाषाओं में गीता के अनुवाद हमने करवाए हैं तो हर प्रांत का बच्चा पढ़ सके। फिर हमारी एक बहुत ऐसी योजना है कि विनोबा जी ने कहा था कि पूरे देश दुनिया के सारे लिटरेचर को उन्होंने पढ़ा, 27 भाषाएँ पढ़ करके ओरिजिनल हिब्रू में बाइबल पढ़ा, ओरिजिनल अरबी भाषा में कुरान पढ़ा, ऐसा बाबा ने किया, मेहनत किया, रिसर्च किया। तो कहते हैं कि सब पढ़ने के बाद भी मुझे लगता है कि एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा संस्कार तब दे सके जब उसको गीता के प्रिंसिपल्स में वेलवर्स्ड किया जाए, और वो हम भाष्यकारों ने, पुरुष भाष्यकारों ने एक ने भी उस पर मेहनत नहीं की है, तो वो जो लैक्यूना रह गया है उसको पूरा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो हमने बहनों के लिए ऐसे कथा गीता जन मंदिर नाम की किताब बनाई है 18 अध्यायों की, कि जिसमें विनोबा जी के प्रिंसिपल्स, उस पर 6 कहानियाँ, जैसे पहले अध्याय कहता है कि आप अर्जुन के जैसे सरल हृदय वाले बनो, तो उस पर 6 कहानियाँ कि अपने देश में कौन 6 लीडर सचमुच सरल हृदय वाले थे फिर भी देश का इतनी सेवा की। फिर दूसरा अध्याय कहता है कि आप संयम में अपनी इंद्रियों पर काबू रख करके कैसे जियो, तो उस पर 6 कहानियाँ अलग अलग देशों की, अलग अलग प्रोफेशंस की, अलग अलग धर्मों की ऐसे। तो क्या बच्चों को माइंड भी वाइड होता जाए और समझते भी जाए कि कोई हिंदुस्तान में ही या हिंदू धर्म में ही अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं, हर धर्म में, हर फैकल्टी में, हर प्रोफेशन में भी अच्छे लोग हैं, कोई आश्रम जाने से या संन्यास लेने से ही अच्छे होंगे, ऐसा नहीं, ऐसा उनको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता जाए बच्चों को, और माए इन कहानी के द्वारा उन बच्चों में उन गुणों को वर्च्यूज को इनकल्केट कर सके। तो वो अभी तक हमारी 7 भाषाओं में हो गई किताब। हर साल हमको उसके लिए हर साल खर्चा करना पड़ता है, और 10,000 कॉपियां छापते हैं तो उनका फिर प्रचार करना पड़ता है, दे शुड गो आउट ऑफ अवर गोडाउन। तो इसलिए हर साल एक भाषा में करते हैं, ऐसे 7 भाषा के हो गए हैं, पर हिंदुस्तान की 26 भाषाओं में हम करेंगे। इस साल मणिपुर की छाप रहे हैं। माओं को हम वो देंगे ताकि बच्चों को आप तैयार करो करके। तो जगत पे कुछ लोग ऐसे होने चाहिए कि जो बदलती सिचुएशंस में हमारे जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स है, मानवता के जो ओरिजिनल एथिक्स है, मॉरल्स है, उनको आज की सिचुएशन में कैसे अप्लाई करते हुए जी सके आज के यंगस्टर्स। उसके लिए वो त्याग बलिदान करके थोड़ा पैसा भले कम कमाने मिले, फिर भी हमको राष्ट्र के लिए कुछ करना है, इस अपील के साथ। तो हमने 4 टॉपिक्स लिए हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग, अवेयरनेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्करेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस यानी भावनात्मक एकता, और सोशल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इन 4 पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उस पर बच्चों को कोर्सेज करवा करके निकालते हैं। तो ऐसे ओवर 30 ईयर्स हमारे पास 300 लड़के ऐसे हुए हैं कि जो हमारी तरह सन्यासी भी बन गए, और बहुत सिंपल रह करके सन्यास का कोई बहुत बड़ा दम्भ लिए बिना, भगवे कपड़े पहने बिना, तीले टपके किए बिना, या अपने को हम पर्टिकुलरली हिंदू ही है ऐसा पैरोशियल स्टैंड लिए बिना, हम मानव है और मानव की सेवा करते हैं ऐसा एक उदार मन रख करके काम करने वाले तरुण हम तैयार कर रहे हैं। तो ये 4 हमारे मुख्य टॉपिक, कैरेक्टर बिल्डिंग, अवेयरनेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भावनात्मक एकता, और स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वो देश दुनिया में कैसे फैले। क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो विदेशों को नहीं पता है, जिसमें हम तो हजारों सालों से जी रहे हैं। ऐसी चीज़ें जैसे अपने बहनों की जो योनि रक्षा है, कौमार्य की रक्षा करने के लिए अपनी बहनों को जितना विचार है, उतना विदेशों की बहनों को नहीं है। या फैमिली कितना स्टर्डी होना चाहिए, मनुष्य का मुख्य सुख पति पत्नी और बच्चे सुख से रहे उसमें है। उसमें अगर इनफाइडेलिटी आ गई तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, चाहे कितने पैसे हो, चाहे कितना प्रेस्टीज हो। तो ये कुछ परिवार है, गांव है, ग्रामोद्योग है, गाय है, स्त्री की मातृत्व है, वात्सल्य रक्षा, ये सबको लेकर के हमने 18 पॉइंट एक प्रोग्राम बनाया है। जैसे नदी का पानी स्वच्छ होना चाहिए, जल जंगल जमीन सूर्य की उपासना होनी चाहिए, उसमें इंडिया एक्सेल्स इन सो मेनी वेज। सूर्य उपासना के इतने ज्यादा मैथमेटिक्स और साइंसेस हमने डेवलप किए हैं, स्पेशली जैन धर्म ने, तो वो सब भी दुनिया में पहुंचे। फिर हर धर्म में ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, परंतु उनको ब्रह्मचर्य यानी खाली शादी नहीं करना या स्त्रियों के साथ संभोग में रहना, इतना ही पता है। तो हमारे यहाँ उसका पूरा साइकोलॉजिकल, नाड़ी तंत्र, योग तंत्र, ये सब को लेकर के एकदम आप टॉप मोस्ट गॉड रियलाइजेशन तक कैसे पहुंच सको जस्ट बाय नॉट गेटिंग मैरिड, उसका पूरा यहाँ पतंजलि योग शास्त्र है। ऐसी कई रेयर चीजें हैं जो हिंदुस्तान ने ओवर 30,000 ईयर्स तैयार की है और जिसके बारे में दुनिया अभी अभी सीख रही है। जैसे इकोलॉजी का साइंस है कि भाई पृथ्वी और ब्रह्मांड का वातावरण, सूर्य चंद्र नदी पहाड़ सब आपको मदद कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, तो प्रिजर्व देम। ये अभी उन्होंने 50 साल 50 साल से ढूंढा है, मेरे हमारे गीता 5,000 साल पहले भी कहा है कि इनको, इन देवताओं को खुश नहीं रखोगे तो आपको वो कैसे खुश रखेंगे। दे ऑल्सो नीड लव लाइक यू लव फ्रॉम देम, लव एंड सस्टेनेंस एवरीबडी नीड्स। पेड़ को भी चाहिए, गाय को भी चाहिए, पशु को चाहिए, पंखी को चाहिए, चींटी को चाहिए, सबको चाहिए। तो उसकी तरफ मानव हृदय, नॉट बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस बट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अवर को लिविंग, उनकी तरफ अपन उदार और अच्छे कैसे हो, उसके बारे में जो इकोलॉजी है वो हिंदुस्तान के पास है, उन लोगों के पास नहीं है। वो पृथ्वी को, पेड़ को, सबको जड़ मानते हैं। हम कहते हैं गैया इज लिविंग, अर्थ इज लिविंग। तो वो जो कॉन्सेप्ट है सारा, वो दुनिया भर में फैले तब तो फिर हमको यह आंदोलन नहीं करने पड़े। जितने ही विदेशी आक्रमण आते हैं तो हमारी गाय खत्म हो गई, हमारे जंगल खत्म हो गए, हमारी शुद्ध हवा खत्म हो गई, शुद्ध पानी खत्म हो गया, पानियों को सब पाइपलाइन से ले जाएंगे और फैक्ट्री को देंगे तो किसान को नहीं मिलेगा। ऐसे कई प्रॉब्लम्स आज के विकासवाद में आ रहे हैं। तो क्योंकि हम गांधी विनोबा के विकासवाद को समझे हैं, हम एक उल्टा विकासवाद कैसे निर्माण हो देश में उसके बारे में बहुत कार्यरत। विनोबा जी का सबसे बड़ा विचार ये हमको लगा कि उन्होंने कहा कि आप काम खूब करो पर अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बहुत नम्र रहो। तो विनोबा जी कभी टीवी पर गए नहीं, रेडियो पर गए नहीं, टाल देंगे ऐसा। हमको कुछ बहुत पब्लिक में आने का या रिपोर्टिंग करने का बहुत शौक नहीं है, सो पीपल डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, बट साइलेंटली एंड अंडरग्राउंड हमारा ये सब चलता रहता है, धीरे धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी, वेदर वी विन द रेस और नॉट वी डोंट नो, कैसे गति से हम जाते हैं। हमारे पास बहुत फंड्स नहीं है, बहुत कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई रेडियो टीवी या कंप्यूटर या व्हाट्सएप या ये सब नहीं है हमारे पास, सादा जेरॉक्स मशीन भी नहीं है, टाइपराइटर भी नहीं है, पर हम सादगी से जितना काम हो सकता है उतना करते हैं, बिना पैसा के और जीवन और समय दे करके, बाय आवर ओन 10 फिंगर्स हम जो कर सकते हैं करते हैं। पत्र भी यथासंभव हम टाइप नहीं भेजते, हाथ से लिखे, 100-200 लोगों को ही भेजना हो हम खुद लिखते हैं, हार्ट टू हार्ट जाना हम पसंद करते हैं, मशीन के द्वारा जाना या कंप्यूटर के द्वारा जाना है, वेबसाइट से जाना नहीं पसंद करते हैं। हमारे पास वर्क ऑल ओवर इंडिया हमारा नेटवर्क है, जिसमें 40-50 कार्यकर्ता बिना कुछ पैसा लिए हमसे वॉलंटरीली काम करते हैं। देखो बाबा का तो एक ही विचार है, सर्व उदय, सबकी जीत होनी चाहिए, किसी की हार क्यों हो, क्यों दो व्यक्तियां लड़े, सब लोग सगे भाई बहन की तरह क्यों नहीं जिए, फैमिली में जैसे हम जीते हैं, ये बाबा का मुख्य उद्देश्य था, सर्व उदय। तो एक तो हमारे पास सर्व का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई सर्व व्हाट डू यू मीन, कल सांप आ जाएगा तो उसको मारेंगे कि नहीं मारेंगे, कल मच्छर यहाँ बैठेगा तो उसको मारेंगे कि नहीं मारेंगे, सर्व यानी क्या, सर्व यानी एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, उसमें जल जंगल जमीन एटमोसफियर सब आ गया, पानी पशु पंखी टोटल ब्रह्मांड आ गया, भूमा, बाबा कहते हैं यो भाई भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, आप छोटे बन जाओ तो कहीं सुख नहीं है, आप सबके साथ एक रूप हो जाओ तो बहुत बहुत सुख है। तो वो चीज जो है सर्व का कॉन्सेप्ट, उदय का कॉन्सेप्ट, कि भाई मेरी जीत होगी तो तुमको रोना पड़ेगा, ऐसा नहीं, तुमसे छुपा करके मैं कुछ आगे चले जाऊं, तुमको पीछे करके मैं आगे चले जाऊं, वो सब एटीट्यूड नहीं होने चाहिए, पेरोशियल एटीट्यूड नहीं होने चाहिए, द्वैत नहीं होना चाहिए आपस में, प्रेम से सब लोग जियो। तो ये प्रेम का कॉन्सेप्ट, उदय का कॉन्सेप्ट, उसमें नॉन वायलेंस आ जाता है, आर यूनिटी ऑफ एवरीबॉडी, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर अगर जीवन को बनाना है तो वो थियोरेटिकल नहीं रहता, फिर प्रैक्टिकल में आ जाना पड़ता है। तो उसमें विनोबा जी का ये कहना था कि श्रम निष्ठा मुख्य चीज है, मनुष्य इसलिए दूसरों से अलग होना चाहता है कि वो श्रम नहीं करना चाहता, श्रम करने वाले कुछ नीचे है, वो तो गंदा काम करने वाले, वो तो झाड़ू निकालने वाले, वो तो संडा साफ करने वाले, वो तो पाइपलाइन ठीक करने वाले, वो तो अंडरग्राउंड लेबरर्स माइंस में काम करने वाले, हम डिग्री वाले तो हम कुछ बड़े, किस लिए कि हम गंदे काम नहीं करते, हमारे गंदे काम दूसरों से करवाते, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा बाबा का कहना था। गंदा तो आप करते हैं, काम उनको करना पड़ता है गंदा, तो यू शुड बी ओब्लाइज्ड बाय देम, आप ग्रेटफुल होने चाहिए, उसके बदले उनको हल्का गिनते हो, हाईब्रोड रहते हो, तो वो नहीं बाबा को चाहिए था। इसलिए यहाँ जितनी बहनें सब बहुत बड़े बड़े घर से आई है, बहुत बहुत पढ़ लिख के आई है, सबके पास बहुत बड़ा बैकग्राउंड वेल्थ का और डिग्रीज का भी था, फिर भी सोशल वर्क का भी था, सब सोशल वर्क करके आई है यहाँ, तो इतनी सारी लीडर बहनें इकट्ठा होकर के आई है, पर आप किसी को मिलेंगे तो लगेगा नहीं कि कुछ भी है, वो ऑर्डिनरी से भी कम लगेगी आपको, इतना सादगी संयम, सब जीने की बात है, बोलने की बात। भूदान में भी थी और मैं आसाम में 10 साल रह करके साधना किया, तब भी वहाँ के ग्रामदानी गांव 1000 थे, वहाँ पर हम लोग काम करते थे, ग्रामदानी गांव के सब्सटेंशिएशन के लिए भी एक संस्था बनी है अभी तो, सर्वसेवा फार्म बन के, उसका भी काम हमने किया। जितना गांधी विनोबा का फैमिली है ऑल ओवर इंडिया, गांधी जी के 21 रचनात्मक काम थे, विनोबा जी के 12 थिंकिंग काम थे, इंटेलेक्चुअल काम थे, तो उन सारे 32 कामों को लेकर के हम लोग सब एक फैमिली है, इट्स अ बिग इंडियन फैमिली, उसको विदेश तक एक्सटेंड करने का भी हमारा, क्योंकि आज के पूरी दुनिया को नष्ट करने वाले जितने प्रॉब्लम्स है, जैसे टोटल डिस्ट्रक्शन, 6000 बार पूरी पृथ्वी डूब जाए, राख हो जाए, इतना आर्मामेंट्स इकट्ठा हो गए देश दुनिया में, 78% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम ऑफ ऑल नेशंस इज स्पेंट ऑन डिफेंस, जो कि लड़ने वाले कोई नहीं है फिर भी आर्मामेंट्स इकट्ठा करते जाते हैं, तो टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल यूनिवर्स इज अ प्रॉब्लम, ओवर एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे बच्चों के लिए, नेक्स्ट 2 generations के लिए ना जंगल बचेगा, ना स्वच्छ पानी बचेगा, ना स्वच्छ हवा बचेगी, तो कैसे जिएगा मानवता, तो दैट्स अ प्रॉब्लम, पॉल्यूशन इज अ प्रॉब्लम, तो ऐसे सारे आपस में एक दूसरे का विश्वास नहीं रहा, फैमिली टूट रहे हैं, डाइवोर्सेस बहुत हो रहे हैं पति पत्नी के बीच में, तो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर, क्राइसिस ऑफ को लिविंग, ये सब भी प्रॉब्लम्स, ऐसे 21 प्रॉब्लम्स हमने लोकेट किए हैं, और इन पर देश और दुनिया में कई वाइज मैन, ट्रांसनेशनल, ट्रांस रिलीजियन, ट्रांस प्रोफेशन, ट्रांस लैंग्वेज, ऐसे लोग हैं कि जो बहुत सोचते हैं इन सारे विषयों पर। तो उन सबके विचार एक साथ हम लाए हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके आज की पीढ़ी को दें, जो कोई फैकल्टी नहीं कर रही है। डॉक्टरों को नहीं पता कि डॉक्टर के आलम में आज कितने गांधीयन डॉक्टर्स होंगे या कितने आइंस्टाइन होंगे। फिजिशियंस को नहीं पता है, इकोलॉजिस्ट को नहीं पता है कि आज शूमाकर कितने दुनिया में काम कर रहे हैं। तो वो सब रिसर्च करके इकट्ठा ला करके टू मेक अ बिग फैमिली ऑफ सर्वोदय, ऐसा हमारा ध्येय है। आफ्टर ऑल आप जितने भी साइंटिफिक रिसर्चेस करेंगे, जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस करेंगे, उनका अप्लाई कौन करेगा? मनुष्य करेगा ना। तो मनुष्य का हृदय अगर दुष्ट बन गया तो दुष्टता की तरफ जाएगी सारी टेक्नोलॉजी। मनुष्य का हृदय अगर अपने कैरेक्टर की तरफ लिया तो सारी टेक्नोलॉजी उसकी सेवा करेगी। एवरी प्रोग्रेस हैज टू बी ऑपरेटेड बाय मैन, और मैन ही अगर अंदर से टूट गया तो मैन मेकिंग एजुकेशन नहीं होगा। इसलिए एजुकेशन शुड बी ए मैन मेकिंग एजुकेशन, ये हमारा मोटो है।
0: अभी आपने सुना आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में प्रवीणा दीदी का साक्षात्कार।
3: आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक की परिकल्पना है श्री के वी राव, लेखन डॉक्टर वर्षा पुनवटकर, समन्वयक श्री अमोल देशमुख, निर्देशन श्री नितिन लोहकरी। विशेष आभार श्री गौतम भाई बजाज, कालिंदी दीदी, परमधाम आश्रम पवनार। इसमें सहभागी कलावंत, विनोबाजी की आवाज़ डॉक्टर इसरार गुनेश, निवेदक सचिन घोड़े, अन्य सहभागी कलावंत वैशाली जोगे, चांगुना भोसले, संदीप देशमुख, राहुल ठाकरे, गौरव भोयर, अभिलाष घीमे, कैनिश देशमुख, प्रसन्न पुनवटकर, पीयूष धामेचा, मधुरा पवार, मुर्तजा अली, पूर्वा पनपालिया, सिद्धांत हस्ते, नितिन लोहकरे, अमोल देशमुख, नितिन घोड़े, सुहास इंगले, सतीश खांडेकर, मिहिर धर्माधिकारी, मयूर भिसेकर, संपदा तांबेकर, मयूरी पंडित, पी तड़स, श्री नागरमुथे, सौ नागरमुथे, निशांत अंबोरे, श्री दत्तात्रेय झाड़े महाराज, श्री आर एन नागरमुथे और संच, श्री सतीश खांडेकर और संच, श्री श्रीकांतजी झाड़े और संच। धन्यवाद।
4: यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, आपलं खानदेश आपली माणसं।
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टच।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या कोई समझदार इंसान अपने घर की तिजोरी में या अपनी मखमली रजाई के भीतर आग की जलती हुई चिंगारी को छिपाकर रखेगा? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि आग और रुई का कोई मेल नहीं है। आप उसे कितनी ही परतों में, कितनी ही हिफाजत से छिपा लें, वो चिंगारी धीरे धीरे भीतर ही भीतर सुलगती रहेगी और एक दिन अचानक भभक कर आपके पूरे आशियाने को मरुस्थल बना देगी, सब कुछ जलाकर राख कर देगी। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हम सब अपने इस दिल के भीतर रोज एक ऐसी खतरनाक आग को पाल रहे हैं और सोचते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा और हम सुरक्षित रहेंगे। वह आग है हमारे भीतर छिपा हमारा अहंकार, हमारी अकड़, यह झूठा भ्रम कि मैं कुछ हूँ। कबीर साहब आज हमें इसी भीतरी आग के भयानक अंजाम से सचेत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र। मैं बड़ी बलाई है, सकेत निकसो भाजी। मैं बड़ी बलाई है, सकेत तो निकसो भाजी। कब लग राखो हे सखी, रुई पलेटी आगी। मैं बड़ी बलाई है, सके तो निकसो भाजी। मैं बड़ी बलाई है, सके

0: आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे प्रवीणा दीदी इनसे गीताई और विनोबा के बाद ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थिति, इस विषय पर उनका साक्षात्कार।
1: प्रेम पंथ अहिंसा का।
2: मैं प्रवीणा देसाई, मेरी स्कूल बम्बई में थी और वो गांधीयन स्कूल थी, तो इसलिए मेरे सब शिक्षक जो थे वो बहुत आदर्शवादी कैरेक्टर वाले और खादीधारी ऐसे गांधी के डिसाइपल्स थे। तो हमने गांधी जी को भी देखा था, काम भी किया था गांधी जी की संस्थाओं में, पर हम 10 साल के थे तब गांधी जी का तो परलोक गमन हो गया, तो इसलिए उसके बाद हम खोज में थे कि हमको गांधीयन लाइन्स कहाँ से मिलेगी। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते, हम फर्स्ट ईयर में थे तब से विनोबा जी का बोधान यज्ञ शुरू हो गया था और एक मैगजीन गुजराती में निकलती थी तब, भूमिपुत्र करके, दो पन्ने की। तो हमारे एक प्रोफेसर ने हमको उसको दिया और हमने कॉलेज में ही सर्वोदय मंडल शुरू कर दिया था। तो जितने 6 साल हम बम्बई में पढ़े, हम विनोबा जी का काम करते रहे। फिर जब कॉलेज छोड़ दिया पढ़ करके, तो विनोबा जी के पास आ गए। अभी तो करीब 58 साल हो गए विनोबा जी के पास आ करके, उसमें से 21 साल विनोबा जी जिंदा थे और 35-36 साल विनोबा जी के जाने के बाद उनका काम कर रहे हैं। ऐसे विनोबा जी ने 71 में गीताई मिशन शुरू किया और मुझे बुला करके कहा कि तुमको यह काम करना है। तो तब से करीब 50 साल होने आए, 46-47 साल हो गए हम लोग वो काम कर रहे हैं। और हमने हर साल 1 लाख गीताई, जो विनोबा ने संस्कृत में से मराठी बनाई है, वो मराठी जनता में पहुँचाते हैं ऑल ओवर इंडिया, जहाँ भी मराठी सर्कल्स है बाहर भी। और गीता प्रवचन जो विनोबा जी की है वो तो 26 भाषा में उसका अनुवाद हुआ है, तो वो हर प्रांत की 10,000, एक एक प्रांत की, कोई भी एक प्रांत की 10,000 हर साल, ऐसा हम हमारा टारगेट है पहुंचाना, फिर उस पर शिविर सम्मेलन करना, उस पर मंडल चलाना, स्वाध्याय ग्रुप्स चलाना, और गीता के मुताबिक जीने वाले बच्चे कैसे तैयार हो। तो कॉलेज के जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनमें हम जोनल कैंप्स करते हैं 7-7 दिन के, कि हाउ टू लिव द गीता इन एक्चुअल लाइफ, तो उस मुताबिक हम फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हो जाते हैं M.Tech, MLLB, M.Com, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, वो सब फिर हमारे पास आकर के सीखते हैं वो। तो उसका रेसिडेंशियल एक यूथ सेंटर भी हमने खोला है। तो गीताई मिशन इन इटसेल्फ काफ़ी कुछ विनोबा जी की गीताई के काम को प्रचार करने के बारे में, और भी जितनी संस्थाएं देश भर में गीता प्रचार कर रही है उनके साथ भी समन्वय साधते हुए हर 3 साल में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें 30-30 संस्थाएं हमसे जुड़ती हैं एक कॉन्फ्रेंस में, और फिर हम मिलकर के एक टोटल प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे क्या करना है। हमारा टारगेट ऐसा है कि हमको राष्ट्र की सेवा करने वाले त्यागी और बलिदानी युवक मिलने चाहिए। तो हम बच्चों की पाठ्यांतर परीक्षाएं लेते हैं, हर साल 2 लाख से अधिक विद्यार्थी उस परीक्षाओं में बैठते हैं महाराष्ट्र भर में, गोवा इंक्लूडिंग। उसके अलावा हम यूथ ईयर्स में या ऐसे ईयर्स में उनको स्पेशल कुछ कुछ देते हैं कि पूरी गीता पाठ करो तो हम 500 रुपये का बख्शिश देंगे, मराठी में पाठ करो तो 250 रुपये का देंगे, ऐसा सब। अलग अलग भाषाओं में गीता के अनुवाद हमने करवाए हैं तो हर प्रांत का बच्चा पढ़ सके। फिर हमारी एक बहुत ऐसी योजना है कि विनोबा जी ने कहा था कि पूरे देश दुनिया के सारे लिटरेचर को उन्होंने पढ़ा, 27 भाषाएं पढ़ करके, ओरिजिनल हिब्रू में बाइबल पढ़ा, ओरिजिनल अरबी भाषा में कुरान पढ़ा, ऐसा बाबा ने किया, मेहनत किया, रिसर्च किया। तो कहते हैं कि सब पढ़ने के बाद भी मुझे लगता है कि एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा संस्कार तब दे सके जब उसको गीता के प्रिंसिपल्स में वेल वर्स्ड किया जाए, और वो हम भाष्यकारों ने, पुरुष भाष्यकारों ने एक ने भी उस पर मेहनत नहीं की है। तो वो जो लैक्यूना रह गया है उसको पूरा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो हमने बहनों के लिए ऐसे कथा गीता जन मंदिर नाम की किताब बनाई है 18 अध्यायों की, कि जिसमें विनोबा जी के प्रिंसिपल्स, उस पर 6 कहानियाँ, जैसे पहले अध्याय कहता है कि आप अर्जुन के जैसे सरल हृदय वाले बनो, तो उस पर 6 कहानियाँ कि अपने देश में कौन 6 लीडर सचमुच सरल हृदय वाले थे फिर भी देश का इतनी सेवा की। फिर दूसरा अध्याय कहता है कि आप संयम में अपनी इंद्रियों पर काबू रख करके कैसे जियो, तो उस पर 6 कहानियाँ अलग अलग देशों की, अलग अलग प्रोफेशंस की, अलग अलग धर्मों की ऐसे। तो क्या बच्चों को माइंड भी वाइड होता जाए और समझते भी जाए कि कोई हिंदुस्तान में ही या हिंदू धर्म में ही अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं, हर धर्म में, हर फैकल्टी में, हर प्रोफेशन में भी अच्छे लोग हैं, कोई आश्रम जाने से या संन्यास लेने से ही अच्छे होंगे, ऐसा नहीं, ऐसा उनको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता जाए बच्चों को, और माए इन कहानी के द्वारा उन बच्चों में उन गुणों को वर्च्यूज को इनकल्केट कर सके। तो वो अभी तक हमारी 60 भाषा में हो गई किताब। हर साल हमको उसके लिए हर साल खर्चा करना पड़ता है, और 10,000 कॉपियां छापते हैं तो उनका फिर प्रचार करना पड़ता है, दे शुड गो आउट ऑफ अवर गोडाउन। तो इसलिए हर साल एक भाषा में करते हैं, ऐसे 7 भाषा के हो गए, पर हिंदुस्तान की 26 भाषा में हम करेंगे। इस साल मणिपुर की छाप रहे हैं। माओं को हम वो देंगे ताकि बच्चों को आप तैयार करो करके। तो जगत पे कुछ लोग ऐसे होने चाहिए कि जो बदलती सिचुएशंस में हमारे जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स है, मानवता के जो ओरिजिनल एथिक्स है, मॉरल्स है, उनको आज की सिचुएशन में कैसे अप्लाई करते हुए जी सके आज के यंगस्टर्स। उसके लिए वो त्याग बलिदान करके थोड़ा पैसा भले कम कमाने मिले, फिर भी हमको राष्ट्र के लिए कुछ करना है, इस अपील के साथ। तो हमने 4 टॉपिक्स लिए हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग, अवेयरनेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्करेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस यानी भावनात्मक एकता, और सोशल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इन 4 पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उस पर बच्चों को कोर्सेज करवा करके निकालते हैं। तो ऐसे ओवर 30 ईयर्स पास 300 लड़के ऐसे हुए हैं कि जो हमारी तरह सन्यासी भी बन गए, और बहुत सिंपल रह करके सन्यास का कोई बहुत बड़ा दम्भ लिए बिना, भगवे कपड़े पहने बिना, तीले टपके किए बिना, या अपने को हम पर्टिकुलरली हिंदू ही है ऐसा पैरोशियल स्टैंड लिए बिना, हम मानव है और मानव की सेवा करते हैं ऐसा एक उदार मन रख करके काम करने वाले तरुण हम तैयार कर रहे हैं। तो ये 4 हमारे मुख्य टॉपिक, कैरेक्टर बिल्डिंग, अवेयरनेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भावनात्मक एकता, और स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वो देश दुनिया में कैसे फैले। क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो विदेशों को नहीं पता है, जिसमें हम तो हजारों सालों से जी रहे हैं। ऐसी चीज़ें जैसे अपने बहनों की जो योनि रक्षा है, कौमार्य की रक्षा करने के लिए अपनी बहनों को जितना विचार है, उतना विदेशों की बहनों को नहीं है। या फैमिली कितना स्टर्डी होना चाहिए, मनुष्य का मुख्य सुख पति पत्नी और बच्चे सुख से रहे उसमें है। उसमें अगर इनफाइडेलिटी आ गई तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, चाहे कितने पैसे हो, चाहे कितना प्रेस्टीज हो। तो ये कुछ परिवार है, गांव है, ग्रामोद्योग है, गाय है, स्त्री की मातृत्व है, वात्सल्य रक्षा, ये सबको लेकर के हमने 18 पॉइंट एक प्रोग्राम बनाया है। जैसे नदी का पानी स्वच्छ होना चाहिए, जल जंगल जमीन सूर्य की उपासना होनी चाहिए, उसमें इंडिया एक्सेल्स इन सो मेनी वेज। सूर्य उपासना के इतने ज्यादा मैथमेटिक्स और साइंसेस हमने डेवलप किए हैं, स्पेशली जैन धर्म ने, तो वो सब भी दुनिया में पहुंचे। फिर हर धर्म में ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, परंतु उनको ब्रह्मचर्य यानी खाली शादी नहीं करना है या स्त्रियों के साथ संभोग में नहीं आना, इतना ही पता है। तो हमारे यहाँ उसका पूरा साइकोलॉजिकल, नाड़ी तंत्र, योग तंत्र, ये सबको लेकर के एकदम आप टॉप मोस्ट गॉड रियलाइजेशन तक कैसे पहुंच सको जस्ट बाय नॉट गेटिंग मैरिड, उसका पूरा यहाँ पातंजल योग शास्त्र है। ऐसी कई रेयर चीजें हैं जो हिंदुस्तान ने ओवर 30,000 ईयर्स तैयार की है और जिसके बारे में दुनिया अभी अभी सीख रही है। जैसे इकोलॉजी का साइंस है कि भाई पृथ्वी और ब्रह्मांड का वातावरण, सूर्य चंद्र नदी पहाड़ सब आपको मदद कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, तो प्रिजर्व देम। ये अभी उन्होंने 50 साल 50 साल से ढूंढा है, मेरे हमारे गीता 5,000 साल पहले भी कहा है कि इनको, इन देवताओं को खुश नहीं रखोगे तो आपको वो कैसे खुश रखेंगे। दे ऑल्सो नीड लव लाइक यू लव फ्रॉम देम, लव एंड सस्टेनेंस एवरीबडी नीड्स। पेड़ को भी चाहिए, गाय को भी चाहिए, पशु को चाहिए, पंखी को चाहिए, चींटी को चाहिए, सबको चाहिए। तो उसकी तरफ मानव हृदय, नॉट बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस बट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अवर को लिविंग, उनकी तरफ अपन उदार और अच्छे कैसे हो। उसके बारे में जो इकोलॉजी है वो हिंदुस्तान के पास है, उन लोगों के पास नहीं है। वो पृथ्वी को, पेड़ को, सबको जड़ मानते हैं। हम कहते हैं गैया इज लिविंग, अर्थ इज लिविंग। तो वो जो कॉन्सेप्ट है सारा, वो दुनिया भर में फैले तब तो फिर हमको यहाँ आंदोलन नहीं करने पड़े। जितने ही विदेशी आक्रमण आते हैं तो हमारी गाय खत्म हो गई, हमारे जंगल खत्म हो गए, हमारी शुद्ध हवा खत्म हो गई, शुद्ध पानी खत्म हो गया, पानियों को सब पाइपलाइन से ले जाएंगे और फैक्ट्री को देंगे तो किसान को नहीं मिलेगा। ऐसे कई प्रॉब्लम्स आज के विकासवाद में आ रहे हैं। तो क्योंकि हम गांधी विनोबा के विकासवाद को समझे हैं, हम एक उल्टा विकासवाद कैसे निर्माण हो देश में उसके बारे में बहुत कार्यरत। विनोबा जी का सबसे बड़ा विचार ही हमको लगा कि उन्होंने कहा कि आप काम खूब करो पर अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बहुत नम्र रहो। तो विनोबा जी कभी टीवी पर गए नहीं, रेडियो पर गए नहीं, टाल देंगे ऐसा। हमको कुछ बहुत पब्लिक में आने का या रिपोर्टिंग करने का बहुत शौक नहीं है, सो पीपल डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, बट साइलेंटली एंड अंडरग्राउंड हमारा ये सब चलता रहता है, धीरे धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी, वेदर वी विन द रेस और नॉट वी डोंट नो। कैसे गति से हम जाते हैं, हमारे पास बहुत फंड्स नहीं है, बहुत कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई रेडियो टीवी या कंप्यूटर या व्हाट्सएप या ये सब नहीं है हमारे पास, सादा जेरोक्स मशीन भी नहीं है, टाइपराइटर भी नहीं है, पर हम सादगी से जितना काम हो सकता है उतना करते हैं, बिना पैसा के और जीवन और समय दे करके, बाय अवर ओन 10 फिंगर्स हम जो कर सकते हैं करते हैं। पत्र भी यथासंभव हम टाइप नहीं भेजते, हाथ से लिखा, 100-200 लोगों को ही भेजना हो हम खुद लिखते हैं, हार्ट टू हार्ट जाना हम पसंद करते हैं, मशीन के द्वारा जाना या कंप्यूटर के द्वारा जाना है, वेबसाइट से जाना नहीं पसंद करते हैं। हमारे पास वर्क ऑल ओवर इंडिया हमारा नेटवर्क है, जिसमें 40-50 कार्यकर्ता बिना कुछ पैसा लिए हमसे वॉलंटरीली काम करते हैं। देखो बाबा का तो एक ही विचार है, सर्व उदय, सबकी जीत होनी चाहिए, किसी की हार क्यों हो, क्यों दो व्यक्तियां लड़े, सब लोग सगे भाई बहन की तरह क्यों नहीं जिए, फैमिली में जैसे हम जीते हैं, ये बाबा का मुख्य उद्देश्य था, सर्व उदय। तो एक तो हमारे पास सर्व का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई सर्व व्हाट डू यू मीन, कल सांप आ जाएगा तो उसको मारेंगे कि नहीं मारेंगे, कल मच्छर यहाँ बैठेगा तो उसको मारेंगे कि नहीं मारेंगे, सर्व यानी क्या, सर्व यानी एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, उसमें जल जंगल जमीन एटमोसफियर सब आ गया, पानी पशु पंखी टोटल ब्रह्मांड आ गया, भूमा, बाबा कहते हैं यो भाई भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, आप छोटे बन जाओ तो कहीं सुख नहीं है, आप सबके साथ एक रूप हो जाओ तो बहुत बहुत सुख है। तो वो चीज जो है सर्व का कॉन्सेप्ट, उदय का कॉन्सेप्ट कि भाई मेरी जीत होगी तो तुमको रोना पड़ेगा, ऐसा नहीं, तुमसे छुपा करके मैं कुछ आगे चले जाऊं, तुमको पीछे करके मैं आगे चले जाऊं, वो सब एटीट्यूड नहीं होने चाहिए, पेरोशियल एटीट्यूड नहीं होने चाहिए, द्वैत नहीं होना चाहिए आपस में, प्रेम से सब लोग जियो। तो ये प्रेम का कॉन्सेप्ट, उदय का कॉन्सेप्ट, उसमें नॉन वायलेंस आ जाता है और यूनिटी ऑफ एवरीबॉडी, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर अगर जीवन को बनाना है तो वो थियोरेटिकल नहीं रहता, फिर प्रैक्टिकल में आ जाता पड़ता है। तो उसमें विनोबा जी का ये कहना था कि श्रम निष्ठा मुख्य चीज है, मनुष्य इसलिए दूसरों से अलग होना चाहता है कि वो श्रम नहीं करना चाहता, तो श्रम करने वाले कुछ नीचे है, वो तो गंदा काम करने वाले, वो तो झाड़ू निकालने वाले, वो तो संडा साफ करने वाले, वो तो पाइपलाइन ठीक करने वाले, वो तो अंडरग्राउंड लेबरर्स माइंस में काम करने वाले, हम डिग्री वाले तो हम कुछ बड़े, इसलिए कि हम गंदे काम नहीं करते, हमारे गंदे काम दूसरों से करवाते, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा बाबा का कहना था। गंदा तो आप करते हैं, काम उनको करना पड़ता है गंदा, तो यू शुड बी ओब्लाइज्ड बाय देम, आप ग्रेटफुल होने चाहिए, उसके बदले उनको हल्का गिनते हो, हाईब्रोड रहते हो, तो वो नहीं बाबा को चाहिए था। इसलिए यहाँ जितनी बहनें सब बहुत बड़े बड़े घर से आई है, बहुत बहुत पढ़ लिख के आई है, सबके पास बहुत बड़ा बैकग्राउंड वेल्थ का और डिग्रीज का भी था, फिर भी सोशल वर्क का भी था, सब सोशल वर्क करके आई है यहाँ, तो इतनी सारी लीडर बहनें इकट्ठा होकर के आई है, पर आप किसी को मिलेंगे तो लगेगा नहीं कि कुछ भी है, वो ऑर्डिनरी से भी कम लगेगी आपको, इतना सादगी संयम, सब जीने की बात है, बोलने की बात। भूदान में भी थी और मैं आसाम में 10 साल रह करके साधना किया, तब भी वहाँ के ग्रामदानी गांव 1000 थे, वहाँ पर हम लोग काम करते थे, ग्रामदानी गांव के सब्सटेंशिएशन के लिए भी एक संस्था बनी है अभी, तो सर्व सेवा फार्म बन के उसका भी काम हमने किया। जितना गांधी विनोबा का फैमिली है ऑल ओवर इंडिया, गांधी जी के 21 रचनात्मक काम थे, विनोबा जी के 12 थिंकिंग काम थे, इंटेलेक्चुअल काम थे, तो उन सारे 32 कामों को लेकर के हम लोग सब एक फैमिली है, इट्स अ बिग इंडियन फैमिली, उसको विदेश तक एक्सटेंड करने का भी हमारा, आज के पूरी दुनिया को नष्ट करने वाले जितने प्रॉब्लम्स है, जैसे टोटल डिस्ट्रक्शन, 6000 बार पूरी पृथ्वी डूब जाए, राख हो जाए, इतना आर्मामेंट्स इकट्ठा हो गए देश दुनिया में, 78% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम ऑफ ऑल नेशंस इज स्पेंट ऑन डिफेंस, जो कि लड़ने वाले कोई नहीं है फिर भी आर्मामेंट्स इकट्ठा करते जाते हैं, तो टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल यूनिवर्स इज अ प्रॉब्लम, ओवर एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे बच्चों के लिए नेक्स्ट 2 जनरेशन के लिए ना जंगल बचेगा, ना स्वच्छ पानी बचेगा, ना स्वच्छ हवा बचेगी, तो कैसे जिएगा मानवता, तो दैट्स ए प्रॉब्लम, पॉल्यूशन इज ए प्रॉब्लम, तो ऐसे सारे आपस में एक दूसरे का विश्वास नहीं रहा, फैमिली टूट रहे हैं, डाइवोर्सेस बहुत हो रहे हैं पति पत्नी के बीच में, तो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर, क्राइसिस ऑफ को लिविंग, ये सब भी प्रॉब्लम्स, ऐसे 21 प्रॉब्लम्स हमने लोकेट किए हैं, और इन पर देश और दुनिया में कई वाइज मैन, ट्रांसनेशनल, ट्रांस रिलीजियन, ट्रांस प्रोफेशन, ट्रांस लैंग्वेज, ऐसे लोग हैं कि जो बहुत सोचते हैं इन सारे विषयों पर। तो उन सबके विचार एक साथ हम लाए हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके आज की पीढ़ी को दें, जो कोई फैकल्टी नहीं कर रही है। डॉक्टरों को नहीं पता कि डॉक्टर के अलावा में आज कितने गांधीयन डॉक्टर्स होंगे या कितने आइंस्टाइन होंगे। फिजिशियंस को नहीं पता है, इकोलॉजिस्ट को नहीं पता कि आज शूमाकर कितने दुनिया में काम कर रहे हैं। तो वो सब रिसर्च करके इकट्ठा ला करके टू मेक अ बिग फैमिली ऑफ सर्वोदय, ऐसा हमारा ध्येय है। आफ्टर ऑल, आप जितने भी साइंटिफिक रिसर्चेस करेंगे, जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस करेंगे, उनका अप्लाई कौन करेगा? मनुष्य करेगा ना। तो मनुष्य का हृदय अगर दुष्ट बन गया तो दुष्टता की तरफ जाएगी सारी टेक्नोलॉजी। मनुष्य का हृदय अगर अपने कैरेक्टर की तरफ लिया तो सारी टेक्नोलॉजी उसकी सेवा करेगी। एवरी प्रोग्रेस हैज टू बी ऑपरेटेड बाय मैन, और मैन ही अगर अंदर से टूट गया तो मैन मेकिंग एजुकेशन नहीं होगा। इसलिए एजुकेशन शुड बी ए मैन मेकिंग एजुकेशन, ये हमारा मोटो है।
0: अभी आपने सुना आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में प्रवीणा दीदी का साक्षात्कार।
3: आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक की परिकल्पना है श्री के वी राव, लेखन डॉक्टर वर्षा पुनवटकर, समन्वयक श्री अमोल देशमुख, निर्देशन श्री नितिन लोहकरी। विशेष आभार श्री गौतम भाई बजाज, कालिंदी दीदी, परमधाम आश्रम पवनार। इसमें सहभागी कलावंत, विनोबाजी की आवाज डॉक्टर इसरार गुनेश, निवेदक सचिन गोड़े, अन्य सहभागी कलावंत वैशाली जोगे, चांगुना भोसले, संदीप देशमुख, राहुल ठाकरे, गौरव भोयर, अभिलाष घीमे, कैनिश देशमुख, प्रसन्न पुनवटकर, पीयूष धामेचा, मधुरा पवार, मुर्तजा अली, पूर्वा पनपालिया, सिद्धांत हस्ते, नितिन लोहकरे, अमोल देशमुख, नितिन घोड़े, सुहास इंगले, सतीश खांडेकर, मिहिर धर्माधिकारी, मयूर भिसेकर, संपदा तांबेकर, मयूरी पंडित, पी तड़स, श्री नागरमुथे, सौ नागरमुथे, निशांत अंबोरे, श्री दत्तात्रेय झाड़े महाराज, श्री आर एन नागरमुथे और संच, श्री सतीश खांडेकर और संच, श्री श्रीकांतजी झाड़े और संच। धन्यवाद।
4: यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।